जी गुरु गरीब निवाज अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन अस्थान दाजरिया पढ़ते गुरु किया संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन संकार वजो बेअंत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम कृपा करनी रहमत बख्श करनी देर उपता दे नाम दा करतु यात्रा।

0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुक्त स्वयं बहु सुखम सर्वदा सर्व युक्त दुकाल प्रणाशी दयाल स्वरूप सदांग संज्ञा भंगम विमुक्त
1: लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्वदेव दे कर नमस्कार।

कमल हरि गज गद हवि भूत धरि गिद्वा मसान बास करुई करत है। कुगुमट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदियो मोन साधई मरत है। बिंद के सधैया ताह हीज की बडैया देत बंदरा सदी उपाय नांगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कै तरत है। भूतबन चारी छित छवना सब दुदाधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताह पंछ की बडैया देत बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी नाहे ऐसे न ना प्रपंच माना भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नाभ के उड़ैया सो चिरैया कह बखानिया। फल के बछिया ताहे बांदरी के जैया कह आदिस फिरैया ते तो भूत कह पछानिया। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के बछिया सोच पोर साम मानिया। सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई दे चंद्रमा सिवैया का कवि कह पहचानिया। नारायण कच्छ मच्छ तिंदवा कहत सब कौल नाभ कौल जिह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी रीखी के स नाम कै।

चंद्रमा ते शीतल न सूरत ते तपत तेज इंद्र सो न राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्वी आदि ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्ण के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते

जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्राप को दलत है। मान से महीप आदिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान।

उपची कपट भेष पोसती अनेकदा निभावतः शीश का कहा भय माल जो पैकाडत अनेक दंड सोताना डंडात आसटांग अथ तीस का कहा भय रोगी जो पैडार्यो रह ऊर्ध मुख मानते।

सी सिपा टिका तजा के कान मैं खजूरा धसा मुंड छा टिका त मित्र पुत्र हूँ के शोक सा आको चरैया फल फूल को बछैया सादा बान को।

भावना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे भेट परलोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर, सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत, ब्रिज फूक फूक पाव भूम श्रावंग धरत है। पहन अनेक जुग एक ठोर बास करे, काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन, भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी का हूँ जोगिया, बैरागी बन कब हूँ सन्यास भेष बन कै दिखावई। कहूँ पावन हारी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी, कहूँ डंड धारी होए क्या लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो, ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गिदर पुकार परे शीत काल, कुंचर अगदहा नेकदा पुकार ही। कहाँ भयो जो पैकाल वात्र लियो, कांसी बीच चीर चीर चोर टाक था।

भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जतिया न मानबो हिंदू तुरक को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचानबो करता करीम सोई राज कर रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मानबो एक ही की सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो देह राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पै अनेक को भ्रमाओ है देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है इके नैन इके कान इके दिह इके बान खाक बाद आतस औ आब को रलाव है अल्लाह भीख सुई पुरानो कुरान उई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है जैसे गाग ते कनु का कोड आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे तैसे भी स्वरूप ते अभूत भूत प्रगट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे केते काछ माछ केते उन का रात भच केते आछ वाछ हो पाछे उठ जाएंगे केते नाभ बीच आछ पाछ का करेंगे भच केत का प्रताच हो पचाए खा जाएंगे जल कहा थल कहा गगन के गौन कहा काल के बनाए सब

बोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोध का प्रबोध हारे जापसी रस हारे चंदन लगाए हारे चिवाचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरा ना मनाए हारे माड़ी माट लीप हारे भीतन लगाए हारे चापसी गाय हारे गंधर्व बजाए।

कहूँ शुद्ध सिख कहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ वृत अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग पोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ

कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रेतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुलाचारणी गीत चर्चा कहूँ बेन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेच भाख्या कहूँ बेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारुड़ गोड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा

अक्षय स्वरूप अद्वय अनाश अन टूट तेज अन खुद भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनभूत तेज अनछि जिगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मा जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह ने ब्योत बाना जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय ने गे नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भर्म भेखा जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मा जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याह जय रोग सोग नहीं सत्र साधा जय त्रास वास नहीं देहना जय आद अंत नहीं रूप रा जय रोग सोग नहीं जोग जुगा जय त्रास आस नहीं भूम भुगता जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नित नित उचिरंत बे जय अलख रूप कथत कतेबा जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुन जन अनंता कई कल्प जोग साधत दुरंता तन शीत घाम बरखा सांध कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तदप पावतन पारा कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध्य पावक झुलंत कई सिमरत शास उचरंत वेद कई कूक काव कथत कतेबा कई अग्नहोत्र कई पावन आहार कई कार्त कोट मृत को आहार कई कार्त साक पै पात्र भाछा नहीं तदप देव होवत प्रताछा कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग आदि करम कहूँ अग्निहोत्र कहूँ तीरथ धर्मा कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त भांत भांतन विचार नहीं नागतास पायतन पारा कई तीरथ तीरथ भरमत सुभरम कई अग्निहोत्र कई देव कर

कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायत न पारा। कहूं राजरीत कहूं जोग धर्म कई सिमरत शास उचरत सो करमा। न्यूली आद करम कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मख को बखाना। कहूं कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरध चार। कहूं कर्त जच गंधर्व दान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दाना। कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत। कहूं कर्त शात सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधारा। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नि ताप कई जपत।

कई करते कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखा मुरारा। बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत होम।

जय जम्पोह जुगण जूह जुअंग भय कंपोह मीर पयाल भुअंग तब ताप सर्व जलेर्थ लंघन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभिया अनखंड अबोध अछेद अछया अनकाल अपाल दयाल सुअंग जय ठटियंग मेर अकाज भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेक रुखंग जय ताप न साप न सोक सुखंग जय रोग न सोग न भोग भुअंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न माद वितंग जय रचियंग छात्रे छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय

रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो। श्रिय सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्रिय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किए देव अदेव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग। प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जंपह किन्नर जच जुवंग। नर नार न पुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पात गणंग भवभूत भविक भवान तुअंग। जेह अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पान प्रचंड बले बन जास कियो फल फूल कली। भूमेर आकाश निवास छितंग रच रोज एकादश चंद व्रतंग दुत चंद दिनी स दीप दये जेह पावक पान प्रचंड मई। जेह खंड अखंड प्रचंड के जय छात्र उपाय छपाय दिए जे लोक चतर दस चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे। अनधूत अभूत अछूत मतंग अनगाद व्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतर दिश चक्र फिरंग। जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आद सिरंग जय बंदत देव अदेव नरंग। गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जे पार ने पावत पूर मतंग। अन खंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जेह वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह। जेह वेद पुराण कतेब जपै सुत सिंध अदो मुख ताप तपै कई कल्पन लात पताप करै नय नायक कृपान दपान पर जेह फूकट।

रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिया सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पात्र जानिया। न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोग अदाग अदग है अभूत अभर्म अभिग है। न तात मात जात है न पात चिह न वर्ण है अदेक असेक अपेक है सदैव विश्व भर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भर्ण है जमी जमान के बिख सदैव कर्म भर्म है। अद्वैक है अपेक है अलेक नाथ जानिया सदैव सर्व ठौर में विशेख आन मानिया। न जंत्र में न तंत्र में।

आद देव उदार मूरत गाद नाथ अनंत आद अंत न जानिया अभिखाद देव दुरंत देव भैव न जानि ज मर्म वेद कते बा सन कासन केश नंदन पाप ही न सेवा जच के नर मच्छ मांस मुर्ग उर्ग अपारा नेत नेत पुकार हे शिव सक्र आमुख चारा सर्व संपत बतार के

गुड गौड न भेल भेकर ब्रह्म शेक स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म कर्म विहीना तीर्थ जात्र न देव पूजा गुर के न अधीना सर्व सपत पतार के तर जानिया जय जोत शेष नाम सांस वर्ण नित पूरन होता सोद सोत हटे सबा सुर विरोध दानव सरबा गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरबा पड़त पड़त थके महा

भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अग्न पाचले थल मैं सर्व ठौर निवास देह गेह न नेह सने अबेह नाथ अजीता सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीता सर्वकर्ता सर्वहर्ता

वर्ण सर्वदाता सर्वज्ञाता सर्वभूक भरना दुष्ट गंजन सत्र भंजन परम पुरख प्रमाथा दुष्ट हर्ता सृष्टिकर्ता जगत में जिगात भूत भव भविक भवान प्रमाण देव अगंज आद अंत अनाद श्रीपद परम पुरख अभंजा धर्म के अन

नाम दुष्ट हर्ता पुष्टकर्ता श्रेष्ठ हर्ता कामा। दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंदा मित्र पालक सत्र घालक दीन दयाल मुकंदा। अघा दंडन दुष्ट खंडन काल हु के काला दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व के प्रतिपाला। सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकामा सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीना। सर्व सिमरतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव अखंड भूम अकाज लेथलामा जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते चराचर मारण पतत उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलखमते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन रम कपर्दन छात्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंडन पुष उदंडन रूप अत चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्रभुन सणमाक मथे दान प्रहार नरक निवारण अदम उदारण उर्ध अधे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन रम कपर्दन आद वृते डाबरू डबंक बबर बबंक भुजा फरंक तेज बरंग लंकुड़िया फांद आयुध बांध सैन विमर्दन काल असुरंग अष्टायध चमक पूखण दमक अत्सित झमक फुंक फनंग जय जय हो सी मै खासुर मर्दन रम कपर्दन दैत यणंग चंडासुर चंडन मुंड विबुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध चिते सरधार विबरखण दुष्ट प्रकारखण पुष्ट प्रहर

निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणी अर्भुं कारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते सहथे सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज अतुलं जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलं चाचर चमकारन चिचुर हारन धूम दुकारन द्रुप मथे दाड़वे पर दंते जोग जयंते मनुज मतंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगरू घमंकन शास्त्र झमंकन फणियर मुंकारण धर्म धुजे असटाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध सनाहे।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काबरू कुमारे अदम उदारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी पर सोहन सुर नर मोहन सिंगा रोहन।

दुख दोग दहंते ज्वाल जयंते आद अनाद अगाद अछे। शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे। जय जय हो सी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे। चंचला चखंगे अलग पुजंगे तोंद तुरंगण तिछ सरे। कर कसा कुठारे नरक निवारे अदम उदारे तूर भुजे। दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे। जय जय हो सी रगता सुरखंडन शुंभ चक्रत निशुंभ मथे। बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सौच विशोचन कौच कसे। दामनी प्रहासे सुख सर नासे सुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे। चंचला प्रयंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग। जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाद उर्धं। घंट का बिराज रुण जुण बाज भंबा बाज सुनत सुरंग। कुकल सुन लाज किलबिक भाज सुख उप राज माध उरंग। दुर्जन दल दज्ज मन तन रिझ सबन

धूम्राट विधुंसा प्रला प्रजुंसा जग विधुंसा शुद्धमते जालपा जयंते सत्र मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़मते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आजगाद अगाद गते खत्रियान खतंगे अभय अभंगे आद अनंगे अगाद गते ब्रडलाज बिहंडन चच्छर दंडन तेज प्रचंडन आद ब्रते सुर नर प्रतिपारण पतित उधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन विश्व विदुन संश्रेष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी परकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदर्खण बितल तले अष्टाद बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आद अनाद अगाद ब्रते दुख दुख प्रबच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाण।

अष्टाद छमकण शास्त्र झमकण दामन दमकण आदि वृत डुक डुकी दमंक बाघ बबंक भुजा फरंक शुद्ध गति जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आजुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पतत उदारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारा नरक निवार पतित उदारे मुंड मथे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रगता सुर मर्दन चंड चक्रतन दानव अर्दन बिड़ाल बधे सरधार विबरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धर्म दुजे धूमराज विधुंसन श्रोणत चुनसन सुमन।

फराके फिरंगे माने कंधारी कुरेसी जाने पाछे मके पाछे में पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरे मानसो तपस्या करा दृढ़वत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर

तेजहु को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है। विरक्तता

तारा। हर ध्यावो संतह जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना।

पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, उजो सदा हमारे पच्छा, श्री असध्वज ज्यों करी यह रक्षा, राख लिहो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्या

देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा।

0: उड़गे सुदा मरे की काकुड़ा पासार लंका बाजे पदे काने कलकमकार चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुते स्वंभव सुंदर सुंदरते दुगाल प्रणाश दयाल स्वरूपे
1: सदांग संगे अभंग विभुते
0: देते उपते नक्षते अजनाम।

0: से अपने प्रसाद आसा महिला पहला वारस वकालां स्लोक मैंने पहले लिखे टुंडे स्वाजे की तरीन स्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देव सवार जिन मानस देती की कल्पना लागी वार महला दूजा जे सब चंदा हुए सर चढ़े हजार इतने चरण हो गया गुरु करदार महला पहला
1: नानक गुना जितने मन अपने

कुदरत जाति जिनसे रंगे कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत बाना मा कुदरत पौन पाने दे संतर कुदरत धरती खा सब तेरी तू कुदरत।

मंगते नचे मंगते गुड़ मुड़ प्रताल बाजारे बाजार में आंकड़े बाजार गावे राजे रानिया बोलिया प्रताल पक्या के बदले लपक्या के हाय हाय जितन पाइए।

0: पड़पड़ कड़ी नदी है पड़पड़ भरे साथ पड़पड़ पेड़ी पाई है पड़पड़ कड़ी खात पड़िए जेते परस परस पड़िए जेते मास पड़िए जेते आरजा पड़िए जेते सास नानक लेख एक गल हर मैं चंगा चाक महला पहला
1: लिख लिख पड़िया ते

पत्नी शब्दम सुर शब्दम सुंदर शब्दम प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जान पे नानकता का दास है सुई निरंजन जो महला पहला एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा वास देव जे को जान पे।

आचुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होय प्राण मुनिस्ता ने पूजे प्राण आपा क्या का कुट्टा बकरा खाना चुके ऊपर किसी ना।